0: अकाल मूर्त अजूनी साहब अंगुर प्रसाद आशा माला पहला वाठ लुकाना शोक के माले पहले के लिखे तुमने असराजे
1: श्लोक मल्ला पहला बलिहारी गुरु अपने देवहारी सदवार जिन मानस ने दे की

दर्शन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा जीवन सच्चा तेरा हुकम सच्चा फरमान।

मंडला खंडा प्रपंडा अन्न चेत पूजा खाणी चेत का सोम जाने नानका सरा मेरा जनता नान जन तो पाए के सामान्य सपना जिन करती करना।

अगर आप सारे मैं पिछले कीर्तनच भी किया है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था नु उच्चा करने की कोशिश करिए। इन शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ जिस शीशे दे विच असी अपने आप नु देख सकी। मैं आप जी के सामने साडे सतगुरुआं दी जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ ताकि सानू कुछ ना कुछ ते चोट लगे कि असी किहो जहे हाँ अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिंदे हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश कीती है हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ एक प्रमाण आप जी दे सामने रखण लगा हाँ अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस किस्म की सी।

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। पाप उन्हां दे कहण दा यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरू का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंदी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लिए एक उपरांता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी नूं एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना, कहते हैं

ग्यारह श्लोक है। अगर असी एक बाणी मंत्र हन, अज ही मैं सवेरे एक लाइन पढ़ रहा सी, गुरु साहब कहते हैं सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, कहते हैं है कि तेरी बाणी ही असल अमृत असल मंत्र है। तो इत्थे हजूर एक कहते हैं कि बिखियन सियो काहे रचियो निमख ना होए उदास। उदास लफज का जो इस दे पिछे जो कोनोटेशन है उसनों असी थोड़ा जा ध्यान दे नाल समझिए। असी उदासी तो मतलब समझते हैं डिप्रेशन गम, जिसनों असी बड़ी नैगेटिव सेंस दे विच लेने। लेकिन गुरबाणी जदों उदास लफ्ज आता है तो इस दे जो भाव हैं इस दे अर्थ हैं वह टोटली अलग हैं। हुण असी उदास लफ्ज नूं किस तरह समझिए। एक है जो साड़ी जिंदगी दे विच डिप्रेशन आता है, असी बड़े अंदरों एंगजाइटी दे नाल फ्रस्ट्रेशन दे नाल जदों कमजोर हो जाने हाँ उदों भी साड़ी जिंदगी उदासी आती है। लेकिन गुरबाणी उस उदासी की गल नहीं करती। गुरबाणी किस उदासी की गल करती है उसनों असी इस तरह समझिए कि जदों जिस चीज दे विच साड़ी रुचि होवे ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਟਾ ਇੱਕ ਘਾਟ ਇੱਕ ਥੁੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੜਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ उदासी की गल जो करते हैं तो भगत की जिंदगी की एक उदाहरण लैके गल करते हैं कि भगत की जिंदगी दे विच रब दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल प्यार हुंदा है, उसकी रूह की खुराक सत्संग हुंदा है, उसकी आत्मा की भुख पूरी हुंदी है जदों उसनू गुरबाणी गुरबाणी पढ़न वाले की संगत गुरबाणी के विचार अते साध संगत का माहौल मिले। जदों उसनू ये नहीं मिलता तो उसके जीवन दे विच एक उदासी आती है, एक उपरामता आती है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं इंसान तुसी हमेशा इन चीजों के विच ही उलझे रहते हो, फसे रहते हो, खोए रहते हो, तुसी इन्हां दे विचों कदे उपराम ही नहीं होंगे। भाव के तुसी कदे आखते ही नहीं हो, कदे रचते ही नहीं हो, तुहाडी रुचि जो है इन्हां चीजों के विचों कदे निकलती ही नहीं है। कहते हैं बिखियन स्यो काहे रचियो निमख ना होए उदास। कहते हैं निमक भरते वास्ते भी पल भरते वास्ते भी तुम इन्हों छना नहीं चाह रहे, इतनी ज्यादा इन्होंने जिंदगी उलझ चुकी है। निमख ना होए उदास कौ नानक हर भजमना परे ना जमकी फास। लेकिन जदों गुरु साहब साड़ी जिंदगी का मुआयना करते हैं, साड़ी जिंदगी का जदों एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने साडे मुतलक अजिहे बाणी च शब्द कहे हैं, मैं आप जी के सामने सुनाना। कहते हैं काम क्रोध बिख भूख प्यासा आ साडे पले, काम क्रोध बिख भूख प्यासा जो दिसे सो आस निराशा नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्ह के चित उदास हैं, पाप जिन्ह के चित इन तमाम दुनिया के झमेलिया तो उच्चे उठ के कुछ होर लभते हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत बिरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन के एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हाँ। उदास का भाव जदों इन चीजों चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लगता होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनने च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहिंदे हन उदासी। साडी अवस्था जिही नहीं है, कबीर साहब भी है। कबीर साहब कहिंदे हन

मैं इस सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों कोई सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो किस दे विचों कोई तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो कास, ये जग जरता देख के पयो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित करे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लगता, तेरा चित करे अजिही चीज नहीं लगता जिहड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन्हां चीजां नूं लगता रहना है जिहड़ियां ने बिनसी जाना है। तो सतसंग जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानू सुनेहा मिल रहा है, जो सानू उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नूं कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इन्हां तमाम दुनिया दे खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असीं इह सुणदिआं सुणदिआं अंदर इह देखणा है कि साडी रुचि बदली है जां नहीं बदली। असीं अपने आप ते सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असीं जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म दी साडी रुचि है, अते जिस किस्म दी रुचि हुंदी है उसे किस्म दा इंसान हुंदा है। आओ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनु सुनो। कहंदे हन

Thank you.
yıldım kıran belki. Yıldım vakit kıran. Tanrı Mern Parti'ye gidip Pırsır Pantı'nın Ama şöyle bir hali yapacak bir maalesef ben daha मेरा नाम नितनेम ना गुरु की जोत पे ये नितनेम ही प्रेम रात देर हो जाए फिर भी नितनेम ही हम लोग चले आओगे देखो हमारा कलेगा केदा प्रेम भी अब भी गुरुद्वारे नेम आ जाएंगे अब उस पर मन आप कौन से फिर प्रेम की और फिर नितनेम की नितनेम जरूरी नितनेम का जरूर बन रोज उनको सुने जाते हैं कि मन सब चंद मिट जाके हाजिरी पर एक प्रेम की पर अमूल्य है महान साधना तो स्वीकार नहीं

होए मेरा स्वामी किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की।

जाको ठाकुर ऊंचा होई सोजन पर घर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर सदा संग नाही प्रभ दूर। कवला चरण शरण है जाके कह जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता सो समरत निज पत है दाता। कैत कबीर पूरन जग सोई

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए,

की जे ता हर ने फल सब घाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ पर

आज हजूर फिर चले गए सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर के पहुंच गए कि नारद वेण नदी डूब देवी नानकी भी कई ने जाती किया जैसे मेरा वीर वेण नदी तो बाहर भी निकली और देवी ने जरूरी कि मेरा वीर कदे भी डूब वह तो डूबिया उतारना पशु परेत मुगत को उतारे पाहन पास उतारे हजू सचखंड पहुंच सचखंड वैसे नरम अगे नूर ही जानना ही उस जोत के अंदर जाके हजूर लीन हो गए जो जर में जर आए खसाना तो ज्योति सन जोत कुछ समय के बाद उस जोत के सोना कांत आ के सतगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नान कल भी जीवन निर्धार करने वास्ते वापस क्यों आ गए हजूर ने किया मेरे दादा जी पहले सत्संग के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते कहना जैसे सब कुछ है जित दर लख मोहम्मदा का ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम्हें इन्होंने अपने नींद क्यों नहीं आवाज आई ने मैं इन्होंने दुनिया से भेजे जाके मेरा नाम दिखाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम दिया इन्होंने अपना नाम जपाए अपना करती अपनी जनानिया का नाम नहीं मैंने इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे विच नींद नहीं बनी साहबान ने हथ अरदास की वाहेगुरु करो कृपा असि मात लोग जाके की दुनिया में तो उस वे अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जाके दुनिया में छुपाओ खेड़ा एक नमस्कार।

रोड़ा से बैठ के सरगुरु जी ने पहली पौड़ी का दुख थी अपनी कमाई का बधाना पा के भेज भी है जिना गुजरा वाला इमला बाद रोड जिना अपने गुरु ने विछाई की थी दास ने सच्ची दर्शन की थी हम पाकिस्तान तो जिला आ गए तो कह रही सात संगत वेखन भावे रोड सन पर जिन्हें रोड़ा उत्ते सतगुरु के पातशाह जी ने समाधि लगाई जो उन्होंने हाथ लाओ तो रिश्तों वर्गे भाई साहब जी जिसने वेद हार कर रोड़ा की तो करी मिठाई फिर पाई गई तपस्या क्योंकि सानू तपस्वी बनाना थी सानू सब सिपाही बनाना मेरा सिपाही भी संत भी बनाया जिथे राजपाल उत्ते योग भी देना इस वास्ते मार्ग में पहला आप पारी नरी तपस्या बड़े पार हर क्यों बनना महान तपस्या क्योंकि कर कर दे जाके पैगाम दे दुनिया नू वाहेगुरु नाल जोड़ना बाबा जी बचन करते सर बाणी कह वास्ते नहीं ये कमाई करके दुनिया नू गुरु ने पहला आप कमाई वड़े बाबा जी एक वेरी चिमले

बड़ी ठंडक हुई। रात 1-2 बजे समाप्ति हुई, अमृत वेले पेट की सब तो उस वेले हजूरी डाली सर पाई साहब पाई संतर, जिस तरह अजकल बाबा जी ने हजूरी डाली पाई साहब पाई के वो कितने बाहर नहीं, वो तो उसे ही सर गुरु नानक के पास के अधीन हाजर हाजिर जान के साहबान कीर्तन द्वारा हाजिर भर के कीर्तन सुना के उन्होंने चिट्ठी पत्र चौथाई बड़िया मेहनत की थी, उन्होंने बख्शा की थी प्यारी संगत। तो अजकल जिस तरह हजूरी राजी भाई साहब भाई के उस वेले भाई संता सिंह जी राजी अमृत वेले कीर्तन होया पूर्णमासी तो दूसरे दिन हाउ किस कोल घुमाया गुरमुख जी ने गरीब ये उसकी मर्यादा पूर्णमासी तो दूसरे दिन यही कीर्तन बड़े बाबिया को लैके इतना आनंद बनया कीर्तन का कि राजमाता इतने प्रभावित हुए। आप संगत उठ के बाहर आके ते सात संगत जुड़े जा रहे गुरमुखरी देख रही कीर्तन का भोग पाया हुक्म होया खेवता तुसी शब्द की हाजिरी में कीर्तन आरंभ किया शब्द पढ़िया कोई आन मिला रहे मेरा कीर्तन से आया हाउ तिस आप बिचारी दर्शन हर देखन के कृपा करे तो सतगुरु मेले हर हर काम से जे सुख दे तो तुझे राजी सुख भी तुझे ते आई जे भुख दे तो इत ही राजा सुख विच सुख बनाई तरमत काट काट सब अरबीर अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी धोवा जो देवे सुख संगम जुड़ी गई अमृत वेल एक मौसम बाबा जी विराग लगाते जुड़े सन अकाल पुरख ये सवेरे सुख पढ़ी बाबा जी ने विराग लगा कह लगे भाई जी की पढ़े गरीब नवाज पखा फेरी पानी धोवा जो देवे बाबा जी कह लगे कदे पखा फेरिया भी है कि एवं पढ़ी जाने कदे संगता वास्ते पानी धोए हथ जोड़ के कहने गरीब नवाज असी तो पंक्तियां पढ़ गए बाबा जी कह लगे जी अमल नहीं किया तो सानू किस तरह उपदेश कर असी नहीं यूजिया कीर्तन सुना प्यारी सात संगत संत महाराज संत सुजान सिंह जी सारा जन उन्होंने पिता जी का जोड़ी वाला सिंह वाजे तो उठा दिया मन बड़ी निराश कर बाबा जी की प्रसन्नता लैन वास्ते आए उल्टा निराश किसी गुरमुख ने कहा कि उदास ना हो क्योंकि बाबिया की ताड़ना ही ताड़ महापुरुषों को ताड़ते हैं जिन्होंने कुछ देना हो महापुरुष बच्चे कुछ कहता है जी इन्हों लहर बढ़ाना होता है कुछ उपराला करो सोचिए कि पक्षे का तो मौसम क्योंकि उससे बड़ी ठंड होती ख्याल आया भी पानी है पर पानी बड़ा नीवा चश्मा बड़ी दूर उतो इनान करके मसा उपर चढ़िया जाए कोशिश की प्यारी सिर के उल चुक लै सारा सारा सिर के कनेक्टर चश्मे से पहुंचे पानी भर लिया चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी बड़ा सा चढ़िया अठ चार सिरे ऊपर आए तो बाबा जी भी नितनेम तो बाद बाहर निकले चिट्टे दुध वर्गे बस्तर चिट्टा दुध वर्गा दाड़ा मस्तक से रबी दूर नेत्रा च रबी मस्ती बाबा जी कह रहे हैं दास जैसे सारा जत्था पानी लैके उपर पहुंचे बाबा जी ने दूर ही वेख्या मुस्कुरा बाबा जी मुस्कुराहट विच भी बड़ी बढ़ती नेड़े आए कह लगे रख दो जे तेरे पानी दे तीर रखे तो कहने लगे कोई नहीं थक गए होगी नहीं गरीब नवाज भावे थक गए पर फिर भी नहीं किया बाबा जी प्रसन्नता विच आए कहने लगे कोई नहीं भावे एक तीर लिया जे हुण पंक्ति पढ़न जोगे तो बन गए आपको तरीक बाबा जी कहने लगे बाणी कहण मत कहण दा असर थोड़ा हुंदा है कमाई करके कहियो दा असर पूर रसना दा बोलिया कन्ना तक रह जाए मन से जाके कदे नहीं मन का बोले आया मन से जाके बनता तो बाबा जी इतना वक्त कर कहते सर भाई कमाई करके दुनिया में इतनी महान ताल बाबा जी ने तपस्या की शरीर जी निर्बल हो गया लकड़ी दिया पौड़ियां बना के फड़ के बाबा जी सारी सारी

करते आए हैं, एक दिन चले तुर जाए एकांत बह के अपने सारे की मूल मंत्र का जाप करे। पर बड़ा महम बड़ी शक्ति है ये लंकारी मंत्र, जितना जप लो एदा बड़ा काम। तुरदियां फिरदियां उठदियां बहदियां हर नाम, वो नाम वाहिगुरु जी का ये जपांगे सतगुरु दियां मेहरां, फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला, फिर साडा एक लोक सुखी पर लोक लगाइए उस उपरंत कीर्तन मात्री और

0: नान के किवारी हो दी ना या सोतरे जे फिर जा सतना हम सिवा है गुरु
1: अनगुरु नान सके पाशाह आप जी की महान भक्ति द्वारा आप जी के सोने दरबार दिया हाजिर कर